कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रकार काळे के स्वर में संत एकनाथ की ये भक्ति।

एकनाथ की भक्ति रचना अभी आपने सुनी चंद्रकांत काले के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना संत तुलसीदास की, जिसे गाया है आरती ठाकुर ने।

आरती ठाकुर ने संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत तुकाराम की ये भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं तादाद सांदेकर।

संत तुकाराम की ये भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार दादा चांदेकर। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत भानुदास की ये रचना, जिसे गाया है मनोहर सबनेस और सहकारियों ने।

मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई संत भानुदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
1: ದಿನಕರ ತನಯ ಪಾಯಲ, ದಿನಕರ ತನಯ ಪಾಯಲ.
0: ಆ ಭಾಗ ಹಾಡಿಗ.

0: 三个木克木尼，
1: 三个木克木尼。
0: ಶರಣ ನಿರೂಪಮ ನಿರೂಪಮ ಮಗರಿ ಗಮಪ ಅದೇ ಸ್ವರಗಳು
1: ಸರಿ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं दिलीप कुमार घोष. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार दिलीप कुमार घोष.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग विलास खानी तोड़ी. Our artist is Dilip Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla is Pradyut Paul, and on the harmonium is Rathindranath Chakraborty. Listen now to A Khayal in the Rag Bilash Khani Todi. Our artist, Dilip Kumar Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग ललित में सितार वादन। आज ही कलाकार हैं शिखा नाथ। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमय मित्रा। तो आइए सुनते हैं राग ललित में सितार वादन, कलाकार शिखा नाथ।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बिलास खानी तोड़ी। Our artist was Dilip Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla was Pradyut Paul, and on the harmonium was Rathindranath Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in the rag Lalit. Our artist is Shikha Nath. Accompanying our artist on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to the rag Lalit on the sitar. Our artist, Shikha Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में सितार वादन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी शिखा नाथ। आज आपके साथ हारमोनियम प्रसाद दे रहे थे हिरणमोई मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग ललित। आवर आर्टिस्ट वाज शिखा नाथ। अकॉम्पनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द हारमोनियम वाज हिरणमोई मित्रो। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

Pada da da ba ga ba

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है पुष्कर ले। आपने प्रस्तुत किया राग बिलास खनी तोड़ी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के घूंगरिया और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है नी के शोभा। साथ संगत हारमोनियम राजू तांबे, तबला विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खनी तोड़ी, आकर पुष्कर ले ले।

अभी आप सुन रहे थे राग बिलास खने तोड़। कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजू तांबे, तबले पर थे विकास पुरंदरे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पुष्कर लेले द्वारा प्रस्तुत राग नट भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मान अब मोरे बालम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के है सुजान करिए। सात संगत हारमोनियम सुरेश फड़तरे और तबला माधव मोड़क। तो आइए सुनते हैं राग नट भैरव, कलाकार पुष्कर लेले ले।

अभी आपने सुना राग नटभैरव, कलाकार थे पुष्कर लेले। आपके साथ हारमोनियम पर थे सुरेश फड़तरे और तबले पर थे माधव मोड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: This is the Ram Channel of All India Radio. In the program of Light Music, we now present a vocal rendition by Ustad Lachman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Raag Tilang. The words are, Sare Salone More Sham, is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वा वे सजन।
1: We're listening to ठुमरी in राग तिलंग, and now listen to मुल्तानी काफी. The words are वा वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं ना ही पड़े मोसे चैन, तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर ना ही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल है की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कम्पोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास धू का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं संया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर संया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे। और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये आदरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु कगाया राग मिश्रित में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल है दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्रित लंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हर्ष अली खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: In the program of light music, you were listening to a vocal rendition by Pandit Lakshman Das Sindhu. He was accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं YS मीरा शिबुआ का गाया राग दरबारी कन्नड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है सुहागन चोल। द्रुत ख्याल त्रिताल में निबद्ध है, बोल है मधुकर भर लादे। आइए सुनते हैं YS मीरा शिबुआ का गाया राग दरबारी कन्नड़ा।

来

I don't, later on, later on, but I just go back.

अभी अपने वायस मीरा शिबुआ का गाया दरबारी कानाड़ा सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित ख्याल तीन ताल में निभत है, बोल है अली मोहे मान। सात संगत रे सारंगी पर एक आदर, तबले पर GN पर्वतकर। आइए सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध कल्याण।

तबले पर जीएन पर्वतकर ने। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: Agam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मारू बिहाग और राग रागेश्री में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं यज्ञ सेनी मजूमदार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं बाबू वर्धन. यज्ञसेनी मजूमदार अपने गायन का आरंभ राग मारू बिहाग में ख्याल से कर रही हैं. तो आइए सुनते हैं राग मारू बिहाग में ख्याल. कलाकार यज्ञसेनी मजूमदार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital. Listen to Khayal in the rag Maru Behag. Our artist this evening is Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar and on the harmonium is Babu Bardhan. Listen now to Khayal in the rag Maru Behag, our artist, Yagnaseni Mazumdar.

0: आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे बाबू वर्धन। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग रागेश्री। Our artist this evening was Yagnaseni Mazumdar. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar, and on the harmonium was Babu Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी यज्ञसेनी मजुमदार।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं वसंत राव देशपांडे. राग है शिवमत भैरव. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं सुगर कीता. द्रोत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं भोर भैरी. संगत कलाकार हैं तबले पर सरवत हुसैन और सारंगी पर लतीफ अहमद. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1982 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय वसंत राव देशपांडे. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग शिवमत भैरव. The accompaniment has been provided by Sarwat Hussain on the tabla and Latif Ahmed on the sarangi. This was recorded in the year 1982.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं वसंत राव देशपांडे। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय वसंत राव देशपांडे। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मारू बेहाग। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग मारू बेहाग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे वसंत राव देशपांडे, संगत कलाकार थे तबले पर सरवत हुसैन और सारंगी पर लतीफ अहमद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय वसंत राव देशपांडे। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सरवत हुसैन ऑन द तबला एंड लतीफ अहमद ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है अमित मुखर्जी का गाया ख्याल गायन. सबसे पहले आप कोमल ऋषभ आसावरी प्रस्तुत देंगे. विलंबित रचना जिसके बोल है जगत का सपना झूमरा ताल पे निबद्ध है. तत्पश्चात आप तराना प्रस्तुत करेंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला.

अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया राग दरबारी में विलंबित ख्याल, जो कि झपताल में निबद्ध है और बोल है जब सो भनक पड़ी मोरी आली। द्रुत ख्याल जिसके बोल है किन बैरन कान भरे, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं राजीव शुक्ला और हारमोनियम पर है इलियास हां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अमित मुखर्जी का गाया राग दरबारी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्य डे. इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज. First, listen to Dhrupad in Rag Shuddh Kalyan, said to Chautal. The words are Allah Sahib.

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग शुद्ध कल्याण सुन रहे थे और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्माल्य डे। नाउ लिसन टू राग अडाना इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

I'm gonna go

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है भजन. कलाकार हैं कोनिका मित्रा.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present devotional songs. We begin the program with bhajan by our artist Konika Mitro.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थी मोधुजा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन। कलाकार हैं प्रदीप्तो नंदी।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज मधुजा मुखोपाध्याय। वी नाउ प्रेजेंट भजन। आवर आर्टिस्ट इज प्रदीप्ता नंदी।

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रदीप्तो नंदे। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं श्यामोल बंदोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट प्रदीप्ता नंदी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen to Shyama Sangeet by our artist Shyamol Bondhopadhyay.